अजर से है गिर पंक्ति, हसे हसे रो वनराज मोड़ा, अपार के गलित मेरव भव्य नाडी दो, कर्नाट विधव शिल्पनंत कलय भेदी दो, अपार के करी जो